माले सुनार जिन करता है करना किया चिंता पे करनी का है सो करता चिंता करे जिन पाया जाग तस जवार स्वस्थ तस दी बाण।

0: कृत कृत बाहु जुग जुग फेर बिटाई है ज्ञानी बुझकता सतगुर संतो का धर्म ग्रंथ बाहु त्रित रथ जत का जोर ग्रंथ बाहु द्वापुर तप का सत ग्रंथ बाहु कलज ग्रंथ गुण का कूड अगर
1: साम कहे सितंबर स्वामी सच

कहत टकत जपमाय साम लचखाय अंतर पूजा पढ़ कते बाऊ संजंत्र का भाई सोडी ले पाखंडा ना

नानक शरण तुहरिया देखो सदा हजूर गुरु के चरण तुहे तुहे पीवा गुरु का दर्शन

के हुकम सच्चे हंस गया गैनारे सा धन छुटी मुठी झूठ विदनिया मृत कड़ा अंग नड़े। वेड़े दे विच ओ शरीर पिया हुंदा है, सा धन आ जड़ी इस्तरी है, धन इस्तरी नू भी किया ते धन आ कच्चा ते सच्चा धन ए भी है। इत्थे धन दा अर्थ इस्तरी है, थोड़ा जा होर बरीकी नाल समझ लियो। ये जिहड़ा शरीर है इनू तन जे आपां कहांगे तन, फिर तो ये पुरशवाचक है, पुरखवाचक। तन हुंदा है, तन हुंदी नहीं है। जे असीं इनू कहांगे दे, जे असीं इनू कहांगे काया, काया हुंदी है, ये इस्त्री वाचक है, ध्यान रखना। जे असीं इनू कहांगे तन, फिर तो तन हुंदा है। जे असीं इनू कहांगे काया, काया हुंदी है, देह हुंदी है। जपजी साहब दी बाणी विच आपां पढ़दे ना, भरिए हथ पैर तन दे, तन दे, तन हुंदा है ते देह हुंदी है। हुण ये देह जिहड़ी है, इहदा जिहड़ा मालक है, इहदा जिहड़ा खसम है, वह अंदर जीव हंस है। जिहड़ा हंस उड़ जांदा है ना, वह हंस इस शरीर का मालिक है, वह इहदा खसम है, इहदा पति है। जदों इहदा पति हंस अंदरों निकल गया, यह काया इस्त्री जिहड़ी सी इह पई रह गई वेड़े विच। थोड़ा इदां समझ लियो। ते जदों असीं अंदर जीव दी गल करांगे, जिंद दी, फिर वह जीव इस्त्री का खसम कौन है? परमात्मा। असीं अपने आप नूं जानण की कोशिश करनी है, पर असीं कदे अपने आप नूं जानिया ही नहीं। अंदर नूं खोजना सी, आपां अंदर कदे खोज कीती हो ही नहीं। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी। मैं परेशानी की है, अंदर नहीं खोज रहे हैं। मैं कौन हाँ, मैं की हाँ, मेरा अंदर दा जीवन की है, असी नहीं खोज रहे हैं, इसलिए परेशानियां ने। जदों असी इस शरीर नूं काया कहांगे, काया, काया इस्त्री वाचक है, इहदा जिहड़ा अंदर खसम है वह हंस है, अंदर दा जीव, उहदे करके ये काया तुरी फिरदी है। तू काया मैं रुलदी देखी, महाराज कहिंदे काया मैं रुलदी देखी है। जदों अंदरों ये हंस निकल जांदा ना, ते इस काया दी कोई बात नहीं पुछदा। ज्यों धर उपर छारो, जिवें धरती ते मिट्टी पई है ना, ये काया तू भी मिट्टी हो के इत्थे रुलदी फिरेंगी। पता लगना है किसे दा शरीर जदों आपां जल प्रवाह करदे हां, ओ

0: एक गल होर ध्यान रखियो, जे अंदर मुखी अर्थ करिए आपां, जिन्हें नाम की कमाई कर ली उदे अंदर भी वाजे वजदे है। किहड़े वाजे वजदे? उन्हां दे अंदर आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां। अंदर उन्हां दे भी अनहद धुनिया चलदियां ने, क्योंकि ये मन मारे, ये मन नू मार के अंदर सच्ची बाणी दे वाजे वजदे आ। जिन्ना चिर मन नहीं ना मारांगे आपां, मन विचों होमे नू नहीं मारांगे, उन्ना चिर शब्द दियां धुनिया नहीं अंदर चलनियां। शब्द दियां धुनिया चलाउण लई अंदर सानू मन नू मारना पएगा, होमे नू मारना पएगा। एक ते अंदर मुखी अर्थ है, बार मुखी ये अर्थ ने कि जड़े नेड़े दे सी वह रुदन करते हैं। वह की कहिंदे? जानी जड़े जिन्हां नाल प्यार सी, विछनड़े मेरा मरण पया, भी ये सानू छड़ गया, ये विछोड़ा पै गया, साडा ते मरण हो गया, त्रिग जीवन संसारे, ये तो बिना असी की करांगे, साडा ते जीवना त्रिग हो गया। और ये भी ध्यान रखियो, वह रोना भी दो चार दिन बाद तक ही हुंदा है, कईयां दा ते टाइम टू टाइम हुंदा है। बस थोड़ा जा आए बैठ के थोड़ा जा रोए, बार वो लोग हसदे देखे ने। जिस घर दे विच किसे दी डैथ होई होवे ना, मौत होई होवे, ते थोड़े समय उत्थे बैठ के रोणगे, ते बार वो लोग हसदे देखे ने। घर दे अंदर रोना, बार निकलदे हसन लग जांदे आ। वो सिर्फ दिखावा करना, ऐसी भी असी रो रहे हैं, सानू दुख है तुहाडे प्राणी दे जाण दा, बाहर निकलदे आ हसन लग जांदे आ। फिर उसे परिवार दे विच दो चार दिन हुंदा है, फिर की हुंदा है, दो चार दिन बाद उत्थे भी फिर वो खुशियां मनाउण लग जांदे आ। साल बाद जदों असी कहने ना भी चलो साल बाद याद कर लईए, ते कई कहिंदे जी असी घर विच खुशियां लियाउणियां ने, जे साल बारह महीने का हुंदा है असी अठवें नौवें महीने ही कह दिंदे आ भी छेती काम नबेड़िए। गल केड़ी केड़ी गल्लां आपां समझिए, ये आम संसारिक लोकां दियां गल्लां ने। ते जदों प्राणी गया उदों असी रो रो के बुरा हाल कर दिता, उदों असी कहा त्रिग है साडा जिउणा, असी की करांगे, ये सानू जिउंदिआं जी मार के चला गया। असी इदां कहने आ, ये बाहर दी सच्चाई है। पर महाराज जी कहिंदे आ हाल जिहड़ा वह हुंदा है, हुण मरना किहड़ा ये समझ लो, ये तो शरीर का मरना सी जिहड़ी गल कीती, शरीर का शरीर मर गया, वह विहड़े विच काया पई रही, फिर उन्हूं नवाया, फिर उन्हूं कपड़े पहनाए, फिर उन्हूं असी शब्द पढ़दियां लै गए, फिर संस्कार हो गया, ये तो काया की गल सी। हुण मरना किहड़ा परवान है उस मालिक दे घर, वह गल महाराज जी सानू समझाउंदे हन।
1: जीवत मरे सो जानी तेरे सचड़े हित प्यारे।
0: महाराज कहिंदे एक मलकल मौत तां आउणी ही आउणी है, ना उहदे तो कोई बचिया ना बच सकदा। ये मलकल मौत है, ये शरीर दी मौत एक दिन होनी ही होनी है। बचपन च भी हो सकती है, जवानी च भी, तो बुढ़ेपे च भी हो सकती है। और महाराज ने तो देखो एक बचपन तो बुढ़ेपे तक दे सफर का एक नक्शा खिंच दिता, दस बालतन बीस रवण तीसा का सुंदर कहावै, चालीसी पुर होए पचासी पग खिसै, सठी के बुढ़ेपा आवै, सत्तर का मतहीन अस्सियां का व्यवहार ना पावै, नवे का सहजासनी मूल न जाने आप बल। महाराज जी कहिंदे ने हुण आ बचपन तो लैके सौ साल नब्बे साल तक दा महाराज ने नक्शा खिंच दिता, अज दे टाइम च देखांगे ते कोई टावा ही होएगा जिहड़ा नब्बे ते सौ तक पहुँचदा होएगा, नहीं तो कहानी पहले ही जिंदगी दी मुक जांदी है। पर ये नहीं, आपां पुरातन समां देखांगे ते सौ साल तो उपर वाले भी बैठे ने, अज भी बहुत घट ज्यादा नहीं बहुत घट ऐसे बुजुर्ग बैठे ने जिन्हां दी उम्र 102 साल 5 साल तक है पर बहुत घट ने पर अगे आपां देखांगे अगे ते नजर नहीं आउंदा भी कोई 90 तक भी पहुंच जाए क्योंकि अगे हालात इस तरह दे ने। खैर गुरु महाराज जी कहिंदे ने मैं पूरा टंडोल के देख लिया ये जड़ा संसार है की है ये जग धुएं का धवल हर एक धुआं ही है इन्हें अंदरों दी उड के आसमान ते चले जाना है जा किसी होर थां ते चले जाना है ये बस धुआं ही है जदों शरीर में संस्कार हुंदा है ते की हुंदा है धुआं ही निकलदा है जदों आपां संस्कार करदे हां वह धुआं ही निकलदा है मुड़ के ते खराक ही रह जांदी है। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸੀ ਕਾਇਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਸੋ ਜਾਣੀਐ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਦਿਆਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਖੀਂ ਬਾਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਿਣ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਨਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਸੋ ਜਾਣੀਐ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚੜੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲੈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਲੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਕੀ ਔੜਕ ਨਿਭਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾਉਣਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਸ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਸੋ ਜਾਣੀਐ ਫਿਰ ਸੱਚੜੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਵੇ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉਂ ਜੋਰੀ ਤੁਮ ਸਿਉਂ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਓ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੀ

सतगुरु महाराज जी कृपा करन, साडे मन अंदर परमेश्वर दा नाम बस जाए, हर सवास दे विच नाम दी कमाई करदे आं, लोक सुखीए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले जीवन बना सकीए। अज दी विचारां करदे आं, बेअंत गलतियां भुल्लां होईयां सतगुरु बख्श देण, अगे तो समत देन, सभना नू चढ़दी कला वाला जीवन बख्शन, आप भी जुड़ो होरां नू भी जोड़ो ताकि ये जीवन सफला हो सके। महाराज जी दे अज दे ये पावन बचन अपने हिरदे विच वस

जिन को कृपा कीनी मेरे स्वामी, तिन अन दिन हर गुण गाए, सुन मन पिने सहज सुपाई। जोग में राम नाम निसतारा, गुरु ते उपजे शब्द विचारा, गुरु शब्द विचारा राम नाम प्यारा, जिस कृपा करे सो पाए।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सुमर कै गुरु नानक लई ते आए।

दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दीदार दर्जा अंतर के बोलो जी। पंजाब प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड सकिया देख चलाई ते गवाही देख के अंड ठीता तेना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघनियां ने धर्म हेत शीश दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी किसान स्वासा नाल निभाही तना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी।

दर्शन स्नान चौंकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मनी वा मत उची मत पत दा रखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाना।

पौड़ियां नंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखरवादा घाटा भुल चुक माफ करनी, आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी, तिल फुल पे ढावा दर प्रवान करनी, यात्रावां सफल करनी।

वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨੋ ਦੇਨੋ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸ ਨਾਥ ਰਾ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋਂ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤ ਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿਉ ਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਾਈਂ ਦਾ कोय न किसकी तरिया, सिर से रिजक समाही ठाकुर, कहीं मन पौ करया। उड़े उड़ आवें सकुंसा, तिस पाछे बचरे छरया, तिन कवण खलावे कवण चुगावे, मन में सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट सदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया। सब निदान दस अष्ट सदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार। सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन, हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा। सब त्या वहीं तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जीहां का दातारा। हर ते आवहो संतो जी, सब दुख विसारन हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हरे को पुरख समान। इक दाते इक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेव हैं जो सेव हैं तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्या वहीं तुद जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त पाए, जैनो हर त्याया जी। तैनो टूटी जम की फांसी, जैनो निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी। तिनका पौ सब गवासी, जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी। जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी। परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी। हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करें हर पूजा जी। तपतापिहि जपिहि बेअंता, तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमृत शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत परे जन नानक जी। जो पावें मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे बड़ अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू नहीं चल करता सोई, तुद आपे भावे सोई वरत जी। तू आपे करहें सो होई, तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी। जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुग वाया तुदया बिछोड़या आप मिलाया तू दरिया हो सब तुझी माहे तुझ बिन दूजा कोई नाही जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल बिछुड़या संजोगी में जिसनों तू जाने है सोई जन जाने हर गुण सद ही आक वखाणे जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद में दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखे हैं जाने हैं सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़े पाईरे निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंकजो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मान एक न चेतस मूड़ मना हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणम तनानक तिन की शरना जेना तू नाही विसरया आसा महला पंजवा पई परापत मानुख दे होरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा किते ना काम मेल साध संगत भाज केवल नाम श्रंजाम लाग पवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह बादशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हादै रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो आप हादै मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख स्वय करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सबैरन को आय संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन शत्र हमारे मारी है, आभाद मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हो जो सदा हमारे पछा, श्री अस्तु जो करियो रक्षा, राख लियो मुहे रखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दसकंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजो अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहें हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंजर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, गड़ गड़ के बड़ बड़ की जन्ने, जाव उदकर्क करा करतारा, प्रजा तरत तव देह अपारा, जब आकर्क करत हों कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रह दिन रालम, जानत बेद भेद अर आलम, रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत पिदा, जाको पीवना पावत बिदा, ताको कृपाहण अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, रंकार का चीनत नह पिव, आप अपनी बुद है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा, इक्कै रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा, अंड जे रसे तज कीनी, उत्पुज खान बहर रच दीनी, कहो भूल राजा हवे बैठा, कहो सिमड़ भयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दखाए अचंभव, अजुगा स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार आसिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण गाता, जे आस्तु तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे, जो कल को इक बार ते है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताही सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला, कृपा दृष्ट तन जहे न हरियो, ताकि ताप तनक मै हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शहा शवह सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल वास्ते ताहे ओबारा, जिन नारे नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर ठोरम हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर ठोरम हो सहाई, दुष्ट दोख दे ले हो बचाई, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने, राम रहीम प्राण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहुपेद कहें हम एक ना जान्यो, सिरियस पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तो ही बखान्यो, दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तो हर द्वार, बहिंगे की लाज अस गोविंदास तोहा, सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तोहार द्वार, बहिंगे की लाज अस गोविंदास तोहा, राम कली महला तीजा अनंत, इक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजियां वादाइया, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आइया, शब्दो तंगावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब मिसारना अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना सवना गल्ला सिमरत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, सचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर दां तेरा सब किच है, जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरा, सच्चा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जेनो भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन वसया, जेनो इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटह, जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनह संत, शवतर प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शव तित घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वास कीते, काल कंटक मारिया, थोर करम पाया तुद जिनको, से नाम हर के लागे, कह नानक तै सुखोआ, तित घर अन्नाद बाजे, आनंद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाए, उतरे सगल बसुरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पये सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनी कहते पवित, सतगुर रहा पर हुरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे, सुनते पुनी कहते पवित, सतगुर रहा पर हुरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे, मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पुंचाए, तिसका होए उधारो, एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख और तारो, तम संसार चरण लग त्रिय, सब नानक ब्रह्म पसारो, श्लोक महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पायोई, तरस पाया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिले आ, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वै हरे आ, तरस पाया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
2: ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी रास।

हर गुण पीने सहज सुपाए, गुरमुख सहज नाम ते आए, जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण पौ पागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई, सोजन हर लिव लगा, जिनको कृपा कीनी मेरे स्वामी, तेना अनदिन हर गुण गाए, सुन मन पीने सह सुपाए, जुग में राम नाम निस्तारा, गुरते उपजय शब्द विचारा, गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा, जिस कृपा करे सो पाए, सहज गुण गावे दिन राती, किलविक सब गवाए, सबको तेरा तू सबना का, हो तेरा तू हमारा, जुग में राम नाम निस्तारा, साजन आए उठे करवाही, हर गुण गावाहे त्रिपत अघाही, हर गुण गाय सदा त्रिपतासी, फिर भूख न लागे आए, दैदिस पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम ते आए, नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए उठे कर माही, नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए बुठे कर माही। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

सुचेत छुटे तलवार ज्यों सुजेंद्र खेत खेते अंदर छुटियां कहो नानक सो नहा फलिए फुलिए बपुड़े पीतन विच सुहा पड़े।

सुख सागर पायो दिंत, हर मग न हुटे संजम सत संतोख, सीलस न हुम फुटे सतगुर प्रमाण बिद न सिरयो, जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरे, ते अभय अमर पद पायो। जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो, तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो, नवनिध नाम निदान रिद सिद्ध ताकी दासी, सहज सरोवर मिल्यो पुरख भेट्यो।

प्रेम भगत पर वहा प्रीत पुबली ना हुटे सतगुर शब्द अथा अम्य तारा रस गुटे मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आजो नी संभव्यो जगत गुर बचन तरायो अभिगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द

जगत उधारन नव निदान भगत पव तारन अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारन सहजत रोवर फल्यो

0: अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक मूसे ज्ञान विहुणी खाई गया जम काल महला पहला।
1: वाइन चिले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा झट पै वेख लो।

0: हो बच नर कुसर गवतार हो जैसे हो चुरो हो च परिया हो च धोए हो वे जाति जन सी खो वे हो च मुरग हो च सियाणा मोक मुकत की सार न जाना हो बच माया हो छाया हो मैं कर कर जंतु पाया हो मैं बुझे ता दर सुजे गन बिहुना कद कद लुजे नानक हुक्म लिखिए लेख जिह विखे तिह विख महला दूजा
1: हो मैं एहा जात है हो मैं कर्म कमाए हो मैं एही बन